0: रेडियो अरुण अरुण
1: 97.6 MHz हरपल तपाईं सँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक
3: It's 6 AM
4: अहिले बिहानको 6 बज्यो।

चाड़ पर्व में यूरो पेंट प्रस्तुत करद रंगीन से घर बरसिं उपहार रु 50,000 को यूरो पेंट को खरीद में पाउन लकी ड्र कूपन अवनह इन्वर्टर एसी एक टन डबल डोर फ्रिज इंडक्शन चूलो राइस कुकर वॉल क्लॉक बम्पर प्राइस में पाउन एक जोड़ी को लगी बाली टूर यूरो पेंट घर मात्र होना रंगाउन सपना बनी

0: रेडियो अरुण अरुण
1: 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक
3: इट्स 10 AM अहिले बिहानको 10 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक, इट्स 5 PM।
2: अहिले अपराह्नको 5 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै
1: रेडियो अरुण टाइम चेक 7 PM
2: अहिले साँझको 7 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक इट्स 8 PM
2: अहिले रातको 10 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईसँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 5 AM
3: अहिले बिहानको 5 बज्यो।